परम सत्कार्य गुरु प्रसाद संगत जी। अरदास गुरसिख पास एक बहुत वड्डी शक्ति, एक बहुत वड्डी ताकत, एक बहुत वड्डी विल पावर है। किसी कार्य नूं आरंभ करना होवे तां वी अरदास, किसी काम नूं समाप्त करना होवे तां वी अरदास, किसी चीज की लोड़ होवे तां वी अरदास। इंज कह लो कि गुरसिख की अरदास गुरु नाल एक ऐसा संबंध है कि जो मंगना चाहे परमात्मा को ले सकता है। पर ख्याल करना, कईयां दा विश्वास टुट गया, कई गुरु नालों टुट गए, कईयां दी जबान ते गिला आ गया, शिकवा आ गया कि मैनू ते बड़ा चिर हो गया अरदास करदे आं, मेरी नहीं अरदास सुनी गई। आओ, दास ने यह प्रकरण तां आरंभ कीता कि सानू अरदास ते यकीन आ जाए। जिन्हां दी जबान ते यह गिला कि साडी अरदास कबूल नहीं हुई, भाई मैं उन्हां नू यह गल कहनी चाहना हां, कमी साडे विच है, परमात्मा विच नहीं है। हो सकता है कि तू सही अखर अरदास दे वरते ही नहीं, जिवें अरदास करनी चाहिदी सी तू ओवें कीती नहीं, जिवें परमात्मा नू अरदास सुनानी सी तू ओवें सुनाई नहीं। इसलिए साध संगत आओ, अज आपां अरदास दी विधि सीख लईए। जे ते अरदास विधि अनुसार होवे कदी बिरथी नहीं जा सकती, पर जे सानू पता ही नहीं अरदास करनी किवें है ते खिमा करना, फिर गुरु ते शिकवा करन दी कोई लोड़ नहीं। कमी साडे विच है, गुरु विच नहीं है। तुश बुद्धि अनुसार मैं गुरु दरबार वल्लों कुछ बाणी दे प्रमाण तुहाडे समक्ष रख रहे हां, जरा ध्यान नाल सुन लेना अरदास दी विधि की है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते ने, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है, पहले ख्याल कर लेना, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है। इस 5 मिनट के कैप्सूल अंदर समुचा इतिहास सिख पंथ का बंद किया हुआ है। हुण इन 5 मिनटां दे विच अरदास किवें करनी है ध्यान करना। सब तो पहले अरदास की विधि, आपे जाने करें आप

पानी के बोहत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पाछा सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचन का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करते ने बख्शिश करते ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहते हैं।

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करते ने साहब धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कहते ने प्यारे है, कदी मच्छी नू देख ले, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कट दे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल, इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे नहीं

दूसरा रस्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जागरक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

अच्छा उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजे शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार दिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दयारे, ए मेरे मालका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही युग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे पे।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चातक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालिका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

सोच का रह जाना कि दुनिया की कोई वस्तु नहीं बाबा दीप सिंह दे दर तो जिदी झोली ना भरे। फिर सोचना वा कि बाबा दीप सिंह जी तुसी एक कलगियां वाले पातशाह दे सिख हो, ध्यान देना। वो गुरु किन्ना क पूरा समर्थ होएगा जिन्हें एक सिख नू इन्ना कुछ आख सकना। बाबा दीप सिंह जी ने कलगी वाले पातशाह दे मुबारक हत्थां चो अमृत छकिया। जत सत ते पहरा दिता, सच ते पहरा दिता, गुरु की चाल ते

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है। ये सच्चे पाशाह शुक्र है, इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है। सेवक बने प्यारे, वो कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों ही सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है, रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी स्नान करते पे, एक सज्जन खड़ा सी कोल, उदे मन च फुरना बनया, मुंह नहीं बोलिया, कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी, फुरना ही बने फुरना। बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है, काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है, पाप कर करके काला हो गया है। देखो सवा बारह का इशनान, एक सवास बिरथा नहीं जाता, पर मन कित्थे रखिया सेवक। गुस्सा ना करियो, सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है, तो मेरा ख्याल दस श्लोक ना सुना लीए तसली नहीं होंदी। महापुरुष का जवाब देखो, महापुरुष का जवाब, पाप कर करके काला हो गया, मैं की करा। धारना बनाते सी ना, काली हो गई नाम तो बिना।

सब तन का गुण सतगुरु गुण सतगुरु जित मिल हर पैदा हो गया तू तन का सुन रहे मैं तुझ बिन अरे

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

अमृत नु प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम्बर से अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रस है और तीनों भागों वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईशर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाण वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा है सरसों किस उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाई है भाई दीवा सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगे भाई जग गया दीवा फिर लोग आपे कह गए नहीं फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरबान के दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक के कम सफले करो प्यार नाल आखो सतना धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सब कुछ दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार दी बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखनी दास तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी अपना भी कोई बापू दूजिया ने बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू तो वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है पर वीर हुण ना जा हुण ना परदेसा नूं जा तो प्यारी सात संगत परमकारी दाता जी दोवां पतियां नूं श्री चंद लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहे बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम को लो मोहंकार की अगली साली बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते नहीं जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत में ले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा दो बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپرب منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلے سیر بولے پیچھے ساری سنگت

उल्टी प्यारी तुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जावे। साथ सगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अद्दा

सेवा करदियां करदियां अज 12 साल दा आखरी दिन आया जदो बाबा अमरदास जी ने गागर चुकी नेम नहीं टूटन दिता 12 साल दे विच कोई दिन ऐसा नहीं खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया अज 12 साल दा आखरी दिन है अज एडा चखड़ चल रहा है एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो, गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है, हर इंसान मांगत है, लोड़कू है, मोहताज है, इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे, लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन की दशा का बयान कर रहे हैं। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोनों ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

निरंकार मेर करेगा ओदी रजा की जो कुछ मालिक देवेगा वो सबर ते संतोख नाल छकांगे। महाराज झूठी गल, मेरा तो तुरना ही मुहाल है। सीधी गल, कीर्तन हो गया और प्रशादा चाहिए, डाढ़ी भुख लगी। हजूर कहन लगे मरदाने काबर ना नंका रोटी देवेगा, मारे कद देवेगा खुश नहीं भाई। कई दिन हो गए रोटी का मुंह ही नहीं वेखिया, पक्की नहीं रोटी की हो गई, एवं किवें कीर्तन हो। हजूर कहन लगे मरदाने कोई नहीं, उदास ना हो, रोटी रब देवेगा, पर अजे सबर कर। मारे मेरे तो सबर नहीं जोंदा, ए पिया जे रबाब जां ता रोटी दो नहीं तो मैनू आ गया दुआ खुशरी पर। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह मरदानिया फिर प्यार नाल कहिंदे, फिर सत्कार नाल कहिंदे हन, मरदानिया तू चढ़दियां कलां चरो, महाराज बड़ा चिर चढ़दियां कलां चरे हां, हुण नहीं रहा जांदा रोटी। हजूर कहन लगे मरदाने इथे तो प्रबंध नहीं हो सकता। मरदाने ने कहा महाराज प्रबंध नहीं हो सकता, ए पिया जे रवाज ते मैनू छुट्टी। मरदाने देख ला तेरी मर्जी है, कथे आया सा करो कथे ही जाते। महाराज जाते तो सही, आप तुम छकते छकते पता नहीं, तुहानू तो भुख लगती नहीं है, पर मैनू तो डाढ़ी लगी हुई। आखिरकार प्यारी सात संगत, अज मरदाने ने भुख दे दुख वजो कई तरह के जवाब सवाल भी हजूर नार कीते, आखिरकार जवाब दे के तुर पे आखुश दी। पहला इन क्लियर

सच्चे लाल नु जौरी कर सकते। कीर्तन दे सोने लाल नु भाई गुरसिख परख दे तुसी परख रहे हो आकर ताई जुड़े बैठे हो, पर मर्दाने हैं जिथे इस चीज की परख नहीं है उथे नहीं रहना चाहिए। महाराज मसा मसा एक चंगा स्टेशन आया थी ते तुसी उपराम ही हो गए ना मर्दाने इथे नहीं रहना। बाबा फिर तुसी जाना तो जाओ, मैं तो नहीं जावांगा खुश रही भाई। मर्दाने बचन मन महाराज फिर मन लवानगा चंगा फेर हजूर तुर पे मर्दाना पदार्था दे लालच आके गुरु तू गुरु नू जवाब देते फेरे लग गए। हजूर तुरे कह लगा महाराज अनवाकुर जगह है आप अगे है तुसी ले आंदा है उस दिन रह के जिथे कहोगे मैं आ जावांगा हुण तुसी कृपा तो करो भी दो चार टके तो रोज मिलन आखो श्री भाई। हजूर कह लगे मरवानी चंगा तो सी साढ़े नाल ही चलता है पर तेरी मर्जी है पदार्था के लाल पिछले रहने लगा है जगह चंगी नहीं है अगे तेरी मर्जी। महाराज तुसी चलो मैं आ जावांगा आखो श्री भाई। चंगा मरदाने टके तो तेन मिल जाएंगे कीर्तन जो करवा रहा है। हजूर चले गए ये मरदाना शहर च आ गया गुरु के बचन द्वारा चार पांच टके रोज मिल जाते हैं फिर कदे जलेबियां कदे मालपूड़े कदे बदाम कदे घ्यो ही छक लेंदा या खुश ली बस। थोड़े समय के अंदर ही मरदाना मोटा था खुराक भी चंगी मिल गई। एक दिन अचानक की प्यारी सात संगत किसी का मकान डिग पिया मकान के ठाए च आदमी आके मर गया। जिन्हों का आदमी मरिया सी उन्होंने जाके बादशाह को फरियाद की बादशाह सलामत साडा आदमी मर गया भी किस तरह मरिया है फला सिर के मकान के ठा के मरिया वह मकान डिग पे। बादशाह ने कहा फिर जिसका वह मकान है उन्हू फांसी चाड़ देवा खुशरी वास्तव हथकड़ियां लग गई पेश किया। इसने किया भी की गल है मैनु फांसी क्यों चाड़ दो। बादशाह ने कहा इस वास्ते तेरा मकान गिर गया है वो मकान गिर गया इत आदमी आते मर गया इस वास्ते। फिर जरा चाचा से कह लगा बादशाह सलामत ये मेरा कसूर थोड़ा ये तो कारीगर का कसूर है जिन्होंने मकान कमजोर बनाए लेबर तो मैं पूरी दिती है उन्होंने मेहनत तो पूरी दिती है ये मेरा कसूर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक इस वास्ते जिन्होंने मकान बनाया ना कारीगर ने उन्होंने फांसी चढ़ इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। वह कह लगे बादशाह सलामत साडा कसूर नहीं ये तो मजदूरों का कसूर है जिन्होंने मसाला टाइम नाल नहीं पहुंचाया सीमेंट ईटा गारा इस वास्ते मकान कमजोर रह गया डिग पिया बंदा इधर आके मर गया। बादशाह ने कहा चंगा फिर मजदूरों फांसी चढ़ दे। जिसने मजदूरों पेश किया आकड़ियां लगी ये कह लगे बादशाह सलामत एक साड़ी अरदास कहो भाई कोई फरियाद है तो कर लो। कह लगे साडा कसूर नहीं क्यों भाई मकान डिग गया तुसी मसाला नहीं टाइम नाल पहुंचाया बंदा मर गया। कह लगे साडा कसूर नहीं जिथों असी मसाला चुके सीमेंट वगैरह तगारी च रख के सिर ते आउंदे सां रस्ते विच एक वेसवा मुजरा पी करदी सी गाउण वाली असी उथे खड़ो जाते इस वास्ते मसाला लेट पहुंचा सी मकान कमजोर रह गया डिग पिया बंदा मर गया साडा कसूर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है भी ये सच्चे है ना फिर रेसवा नु फांसी चढ़ वापस श्री भाई। इसलिए उन्हू बुलाया आतड़ियां ला लिया बिचारी पेश किया तेरे क्या मेरा की कसूर है सारी मिथ्या दसी इसके अगे कोई जवाब नहीं सी आखो श्री भाई एदा कोई जवाब नहीं सी। पर जिसले फांसी वाला रस्सा एदे गल पाण लगे एदी गर्दन सी जरा पतली ते ओ गण सी जरा खुली आखो श्री भाई ओ एदे गल विच ना आवे। जलादा ने कहा बादशाह सलामत एदे गल च रस्सा नहीं आउंदा। बादशाह कहण लगा जेदे गल च आउंदा उहने फांसी चाड़ो आखो श्री भाई। ए हुकम दी तमीर करन वास्ते जेदे बादशाह दे पुलिस दे बंदे सन ओ तुर पए वी ओ जिहा मोटा ताजा किधरों लभे। प्यारी साध संगत पुलिस के बंदे जा रहे सन ते अगे मरदाना हलवाई की दुकान से बैठा होया मिठाई पिया खांदा सी जाके पुलिस वाले ने कहा भी तू कौन है। मरदाने ने कहा रब का बंदा फिर रब के बंदी की रोड़ है सन पकड़ लिया। कह लगा मरदाना किधर ले चले कीर्तन करा आखो श्री अगे तो कोई मिले नहीं प्रेमी अज तू किधरों प्यार जाग पिया। कह लगे आ तेन दस दें
بادشاہ دے سامنے پیش کیتا تیاری ساتھ تے جس نے مردانے دے گل چ رسا پایا فاسی والا وہ فٹ ہو گیا خوش ہو گیا مردانہ رو پیا کہنے لگا مینو کیوں مار دے ہو بادشاہ نے کیا اس واسطے تینو پھانسی چاڑ دیا تیرے گل چ رسا فٹ آ گیا خوش ہو گیا میرا کوئی قصور نہیں بادشاہ نے کیا انہوں گلوں اتنے کوئی نہیں جانا جس نے مردانہ پھانسی چڑھ لگا اس ویلے تیاری ساتھ نے تو مردانے نو میرا دھن گرو نانک چیتے آیا بخیر سانو بھی دکھ والے رب چیتے آؤں گا سانو بھی دکھ والے رب چیتے آؤں گا جی گھر ٹھیک ٹھاک ہے تو گرودوارے جان کی لوڑ ہی نہیں جی پتر بیمار ہو گیا دوائیاں کرتے ہیں جی ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے تا گرودوارے آ کے کہنے ہیں بھائی صاحب نو بھائی صاحب کرو ارداس گزری ڈاکٹر نے اگیں کدی نہیں ویکیا گرودوارے جی ٹائم نہیں سی مل رہا اب مل گیا ٹائم جی پہلے ہی آؤں رہتا تو لا علاج کیوں ہوتا پتر تیرا دکھ ملے گا کیوں حضور بانی کہ دکھ تدے جا گزر جائے اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے دیوا بج جانا ہے لائٹ آف کر دو اندھیرا ہی اندھیرا جگا دو چان اسی طرح بھائی جی نہ تو دیوا نہیں جگایا تو دکھا دے ہلے تو آ ہی جان گے اس ویلے آ کے ارداسیں کرانے شلنگ پیٹا کرنے کڑا پرساد کے دیگا بھی کرانے جو کچھ بھائی صاحب کہہ دو مترے بھی کرنے لگ جاتے تھی حضور کہتے نا دکھ دارو دکھا جراب میں چیتے کر رہے ہیں پر تلسی جی نے بڑا سندر لکھا دکھ میں سمرن سب کہے اس جگت کا یہ وہار بن گیا دکھ میں سمرن سب کرے